0: इसका भाई है छोटा बच्चा.
1: ना ना ना ना मैं खुशी.
2: मौजी फिरोज नाम का बच्चा देखा?
3: आप आगे जाके देखो.
2: छोटा बच्चा देखा आपने?
1: नहीं.
2: एक बार ठीक से देखो मौजी.
1: नहीं.
2: शुक्रिया. सॉरी बेगम.

जाने का वक्त तो अभी थोड़ी देर और है, 15 मिनट के बाद मैं जाऊंगी, बट कमिंग बैक इन द ओरिजिनल सॉन्ग हम दोनों मूवी नींची मोहम्मद रफी एंड आशा भोसले पाड़ेरु काकुपुत्र रीमिक्स रॉकी और रानी की प्रेम कहानी मूवी ने चल पिचानू. आई होप मोनिका एंड चैतन्य आर ओके विद दैट. कमिंग बैक टू आर टॉपिक, इप्पुडु ओक क्लिपिंग विनिपिंचबोतुन्नानु. विनेश एंडी सिनेमा पे तेलिस्ते call me at 972-636-1966. Here we go with this clipping.